0: ये सब नशीन चूस इन्हें रंग सन लेना न्यामले चिमार समसं क्यों मचू चांगने दून जाए बता
1: चांगने दून खाले या खारी बो चांगने दून के अंगलो टूर समझूंगे मशीने किरानी पाल खाचे बजे यहीं गेंद खारी हूँ चिंटे चको या आयु
0: कैसे मरांगे चांगने गेंद जाए भी ना
1: मी करो फो में बा
0: तंदो चांगने ची पार भी ना
1: जी जी ताशे मो तंदो मांगता ना अंगाचों खाचू जुरी
0: 等到做起呢，
1: 今朝速度可真是急。你看弟弟子孤单，宁怎么还做孙呢？政策被送人没孙呢，却还着急，家里给不宁不买吃不着。但看这妻子鱼，三月来得不起鱼哩。上个，宁都退休几年呗？陈辉给政策把乱码头不接，搞了点麻痹蛋。
0: 爹，应不随其他是吧？我这得赶不起你忙起，老群去算账，全部没被拧到的，把老哥顶着是过日。我那行上算。
1: 我让你找不着不是？
0: 日娃。
1: 开什么日？开什么日？

0: दोस्त दे रासम दा छेब जा
1: ने जाय के राम तो सुन सिस तो जे ना
0: शान थान द लेग दे कोम जो सोंग जा मन से ने ने रान थोंग जिन छि छि यु इ ने रान गे सो सु रन दुई बे लंग गा स्तंग बे छे छा जा ने उर सु के ने यु मा शे जि मा ले खर छे वा छा छे ने शु के छि
1: तो छि ने के रान ल चेन क्वेश्चन दिन जि गे रि बे
0: जि रि छे दा
1: कि रान गे मो रा मिन किन के यु ना
0: Susi ye. Ale, karsa di.
1: Morangi, ming le, yen xiao zuwa shi. Morang, gong si nangi le ge hu shu di shi. Le kari yin eki rangi gui zhi ma nang ho le, morangi zhi zhi qie cha shi. Gong si yong mi morang le jang di rsi bi wo shi. Ke si, ki rangi morang le, di karsa sma su bi yin, morangi ti bie, bie zun xie to hap shi.
0: Yong a, nye sim qia xiao.
1: 这个东西不来，他先拿。行，
0: 给我啊。